0: प्रहित कले वेचिंग अ छेन धन अ छन गा कोइ छ छै गो शख सगो अल छ ब छै ल सुट ग छित के न अदर बता छ फम छु के टॉप कॉलिंग छिन
1: यस ग छ नंबर 1 हन नगर ताजिंग गु मिशन के ल कर बसाना जी तबरी टॉप कॉलिंग जी
0: यस सगो के मैस के टाइम छ म प्राइट न गरे गा कोइ छ ले स्टूडियो आज ग बीत के बतुल बगेंगे एन करो ने छ नि ने उनी छ के मैस के वेगन
1: अब दि म बिजे लेन म जा जा ने गिरे ने मदन ने ने सुइल सही थी
0: यस के ला म चाचा वैसे के वेगन ने मचान में ट्राई के एंड बंदा ने वो रेडियो